0: वाह यार गीते भाई दिए गल है कि किन्ने देखो ऐसे हिट ने दो चार जेडे किते भी चल जाओ चलने ही चलने है, सवाल ही नहीं पैदा होंदा कोई फंक्शन है खत्म हो जाए तो गीते बाई का यह गाना ना चले तो सीटी मार के बुलाने हट जाओ ना चले। सो प्रोग्राम पे जावे रहा एक होर यार बड़ा वधिया उन्हों का आ जानी बहाना ला के सहर दा करो मित्रा नू मुखड़ा दिखाउण दे लई वह भी लाने यार मैं वो गाने नहीं सुने बहुत चिर हो गया। प्रोग्राम पंजाबी रहा तो बहरा बहरा बल्ले बल्ले यार माहौल ही ऐसा बन गया कि जी करदा मैं कहना कि प्रोग्राम भी खड़ के करिए तो भंगड़ा पईए नाल दी नाल गिल फार्म गिल फार्म गिल फार्म गिलों के फार्म से जाओगे तो बहरा बहरा तो होगी होगी। इतने बहुत सारी सब्जी हुण रेडी है डेली फ्रैश ये सब्जी पिक करते हैं चप्पण कद्दू ग्रीन कद्दू बैंगन जुकीनी खीरे साग पालक धनिया कॉर्न तो इन्हों का फ्रैशली मिल किया होया पत्थर की एक चक्की नाल पीसिया होया आटा होल वीट मक्की बेसन बाजरा आदि। सो किंग एंड डिक्सी 14085 डिक्सी रोड किंग एंड डिक्सी से थोड़े लिए हाजिर वन एंड ओनली एको एक गिल फार्म ते गिल फार्म 1981 हेलो
1: हाँ जी की हाल चाल
0: है वधिया की बनता
1: बस गाने सुनी जाने बहुत सोहना लग रहा
0: है वधिया ना रौनक जी लगी हुई है
1: कैंट कर ले करो ऐसा को ना मतलब एनर्जी रहती है बंदे
0: असि तो करते रहने हैं
1: बस होता ही है दिल्ली में
0: आई नो आई नो
1: एक मेरे गाने ना गिप्पी दा इश्क जहरीला वो बहुत लगता
0: केड़ा
1: इश्क जहरीला
0: ये की है
1: सॉन्ग आए इश्क जहरीला
0: मैं तो कदे सुने बोल की है गाने दे
1: सदा सिर नु चढ़ गया नी तेरा इश्क जहरीला
0: ओके लभना पड़ा मैं यार मैं तो मतलब सुने तो होगा मे भी बट पार्टियां ते जे चलदा
1: ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਟੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ
0: ਫਿਰ
1: ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਸ ਇੰਨਾ ਡਾਂਸ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ
0: ਅੱਛਾ
1: ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ
0: ਲੱਭਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨੀ ਕਦੇ
1: ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲੀ ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਉਹ ਲੈਂਬਰ ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਗਰ ਦਾ
0: ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਯਾਰ ਸੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਿਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡੇਰੀ ਕੁਈਨ ਕੈਨੇਡੀ ਮੈਕਵੀਨ ਮੇਫੀਲਡ फैशन आई क्यू कोट पेंट या कुर्ते पजामे एक लो दूजा 30% ऑफ लेडीज सूट नॉन ब्राइडल लहंगे एक लो दूजा 30% ऑफ फैशन फैशन फैशन आई क्यू तुसी एक बार गेड़ा मारना एयरपोर्ट डेरी क्वीन कैनेडी मैकवीन मेफील फैशन आई क्यू 2696 थोड़ी आवाज वीरे बहुत घट आ रही है बहुत खड़खड़ हो रहा पिछे
1: ਗੱਭਰੂ
0: ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀਪ ਕਿਹੜੀ ਜੀਪ ਰੱਖੀ ਹੈ
1: ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ
1: ਜੀਪ ਬਾਈ ਜੀ ਰੂਪੀ ਗਵਾਣੇ ਆ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੜਦੇ ਨੀ ਫਿਰ
1: ਰੂਪੀਗੰਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਟੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਪੇੜ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਪੇੜ ਆਉ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਡਿਸਕਸ
0: ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀਪ ਰੂਬੀਕੋਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਟੌਰ ਹੈ ਹੈ
1: ਮੇਰੇ ਪਿੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ 4x4 ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ
0: ਅੱਛਾ ਸਨੋ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਹੈ
2: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

हर दिन हर वार शनिवार एतवार वी डोंट प्रे फॉर लव वी जस्ट प्रे फॉर कार्स।

0: मीरल जी, तो शो पता कि आजकल थिएटरस मुतलक कद बात करा।
1: बिल्कुल रमेश जी, अच्छी आसान जे साइनन सामिनन तान गसी थिएटर च पूर पूर जानकारी बात जन।
0: बिल्कुल जानकारी देत सीमन तो बे ति दिम होक जानकारी दपन कुनुशत सतवंधास मंज आये अभिनव भारतीय थिएटर ग्रुपस मंज मोतीलाल किम्मू ड्रामान हंद अंबार पेश करद। अथ मंज आये के खास ड्रामा निगारन हंद ड्रामा पेश करद। यमो मंज मशहूर अस उपेंद्र नाथ अश्क, रविंद्र नाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, बंसी निर्दोष, मोतीलाल किम्मू तो पुष्कर नाथ भान सिंह ड्रामा। अमे अलाव आये हरीश चंद्र तारामती, शिव लगन, फिरथुर, मंजिल निक, आकाश पाताल, हीरो मचाम वगैरह करने।
1: अभिनव भारतीय मंज के शख्सियत यमो पन अक मुकाम बनो तिमो मंज अस डॉक्टर रतन लाल शांत, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, रविशंकर केमू, सूरज रैना, अशोक कल्ला, नंसी गंजू, हीरा लाल राजदान, रियाज रफाई, जमन लाल हक्कू, त्रिलोकीनाथ वैष्णवी, सोहन लाल कौल वगैरह। किमो मंस रविशंकर केमू, सोहन लाल कौल, डॉक्टर गौरी शंकर रैना, सूरज रैना चे वे कुन नत कुन तरीका अ थिएटर से जुड़े। अमे अलावा चिके अमेजर ड्रामा क्लब यमन मंस रंगमंच, संगरमाल, वसंत थिएटर वगैरह शामिल छे। कश ड्रामा हस मूल टाइम वक्त ते पोचर येले मोतीलाल के मोहन लुक थिएटर ग्रुप या यथ बांड पत्थर तवनांच सुइत वाबस्तगी थ। खास तौर पर कशुर भगत थिएटर अकिनगाम येले के मुसबनी मन सिद्ध तकदीर हवस जोल गयम ते कोले गयम कांग ही ड्रामा टैगोर हालस मंस पेश कर।
0: कशुर ड्रामा हस मूल अके नव तरीको पोचर सीट बने आख ड्रामा फेडरेशन यम हर वरी ड्रामा फेस्टिवल करान यमिकिन ड्रामा कुनुशत शीतस पांशीतस ताम कशीर मंज जिंद रूद। रंगमंचिक वारिया कलाकार युहुंद नाव हैन बगर रोजी ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट तो तिम गई मखनलाल सराफ, बिहारी काक, बंसी मट्टू, अशोक जालपुरी, शादीलाल कौल, आशा जारू, भारती जारू वगैरह यमो थिएटर आजदान जिंद थो मुझो। तो मीनल जी यस ड्रामा तो थिएटरस मतलब जानकारी यस ऐसे पन्यन सामिनन तान वात रहो।
1: बिल्कुल रमेश जी, तो ऐसे उम्मीद जितवन ते ऐसे पसंद आमुत इस कोई प्रोग्राम तो हम उतल तिमन इजाजत।
0: बिल्कुल, मगर छुना सिला नियरन नियरन भोजन हो अकबर।

बड़ा के शैल बड़ा के मिठा गीत सुनिए नंद गया ही ते अस गल करा दे ही जम्मू प्रदेश दी ते मैं आ तुंदी आरजे नेहा शर्मा ते जदो राजे ने दिखिया ते उन्हें फिर उस जगह ही बसाने दा निर्णय ले लेता। उस राजे दा नाम है राजा जी जम्बू लोचन ते उन्हें राजे दे नाम पर इस डुग्गर प्रदेश दा नाम पिया जम्बू, पर उन सरल भाषा च जम्बू बोलते बोलते जम्मू के हुई गया। ते कनेही लगी तुसी कहानी? ये जिहड़ी कहानी है एक दंत कथाएं च एक है जिहड़े साढ़े बड़े बजुर्ग असें सुनांदे ने, असें सुनी दी है अपने जम्मू प्रदेश के नाँ के पिछे का महत्व। ते इसी कहानी का प्रभावित होइए मैं ये अपनी कविता भी लिखी ही। सच च गे इसी मंदरे का थां रखते हैं, इतने बड़ी बड़ी चमत्कारी जगहवां ने, उनके बड़े बड़े महत्व ने, ते बड़े ही इतने लोग जड़े ने बड़े मिलनसार न, बड़े मेल भाव कन्ने रोंदे ने। ये जिहड़ा शेर ते बकरे का उदाहरण है वो

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी बुक्कल चो यादां ते संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार ले संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा विच चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नूं बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
1: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763

0: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, RE/MAX Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.
1: कमाल दा कैसी यार यकीन ही नहीं होंदा
2: तिनु इधर ते यकीन नहीं होंदा तू ए सुन सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तो हदे घर विच इलेक्ट्रिक जा ऑयल हीटिंग है
1: इस गल ते मेनू पूरा यकीन है ओते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक भी फ्री च बाहर कर देंगे नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने
2: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ
2: ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
1: save on energy.ca/eap

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स, हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुने करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल
3: 647-706-6640-647-706-6840।
4: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
7: GTA दी बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज नाल मौका मिल रहा है वधिया डॉलर कमांदा ते गड्डी चलाउंदा।
8: अल्फा ट्रांस नु चाहिदे ने EZ ड्राइवर्स, टीम ड्राइवर अते ओनर ऑपरेटर। वधिया पे पैकेज अते 12 महीने कम ते मान सत्कार भी पूरा करदे ने।
7: अज ही संपर्क करो लखी सैनी नु 905-799-1525, 905-799-1525 या विजिट करो 105 ईस्ट ड्राइव, ब्रैम्पटन।
9: CWC Immigration is one of the largest immigration companies. Inna de char office Canada chene, de 12 India chhe. Main Mr. Kheran nu personally janda. Main unna de office bhi gaya. Te unna de clients nu bhi mile hai. Mainu lagda hai ke oh, they believe in quality and they are dedicated to providing competent services to the clients.
10: Sitariyan di pasand, thwaddi sariyan di pasand. CWC Immigration. Express entry, work permit, family sponsorship, immigration appeals, immigration de har masle da hal. CWC Immigration. 905-670-4444.
11: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ,
0: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ,
1: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ,
0: ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ,
1: ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ,
0: ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ,
1: ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ,
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ
1: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।
2: मिलना इवेंट्स लेके आ रहे ने तुहाटे वास्ते रू का सफर टूर। जी हाँ, लाइव मास्टर सलीम कॉन्सर्ट इन टोरंटो 24 जुलाई नू मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर दे विच। एक ऐसी ही शाम जो छू लेगी तुहाडी रूह नू।
3: मैं के अचन जी सलाम कहने आ।
2: दिला नू टुंबन वाले मास्टर सलीम दे सूफियाना तरान ने अते हाई एनर्जी पंगड़ा बीट्स गूंजन गे 24 जुलाई नू। तारीख नोट कर लो, 24 जुलाई। अपनी टिकटां अज ही बुक करो। लॉग ऑन करो www.milnatickets.com ते। स्पॉन्सरशिप अते होर किसी भी जानकारी लई तुसी रोहन शर्मा नू कॉल कर सकते हो 6477839873। बस रेडी हो जाओ नचण गाउण ते चूमण दे लई। सुरां दे बादशाह मास्टर सलीम दे नाल।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/EAP
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ।
4: Imagine having a Muskoka getaway that works for you, even when you're not there. Discover a rare opportunity at an exclusive open house in Huntsville, where peaceful surroundings, year-round enjoyment, and endless outdoor adventures meet proven investment potential. This exceptional property offers 3 bedrooms, modern finishes, and lake access nearby. Curious to learn more? Visit the open house Saturday, July 25th from 1 till 3, or contact Jay Gundam, Remax Gold Realty, Inc. at 416-265-2222.

0: फोन ना कोई गल नहीं चक लेंगे, जस्ट टॉक टू दैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 905-673-3333 स्टूडियोज के नंबर ने। और मेरा नईम जी, हाँ जी नईम, हाँ जी
1: हेलो,
0: हाँ जी नईम जी, नईम जी बोलो।
1: मुझे कॉल की है किसी ने?
0: नहीं हमने नहीं किया, आपको ना रॉन्ग नंबर लग गया, आप रेडियो स्टेशन पे लाइव कॉल कर रहे हैं।
1: रेडियो स्टेशन,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर, तुसी डॉक्टर जितेंद्र गरेवाल होना क्लिनिक ते जाके आओ। कल असी एक छोटे बच्चे ने अपने फैमिली चो लैके गए, दंद हिल रहा सी, थल्ले वाली जाड़ निकल रही सी। तुहाडा इलाज फ्री हुंदा बिल्कुल, बच्चे नूं तकलीफ च ना रहण दो। बहुत सारे बच्चे दी दाड़ां थल्ले वालियां निकल रही, उपरले दंद निकल लैंदे ने, उहनूं तकलीफ ना झलण दो। डेंटिस्ट ते लै जाओ, दो मिनट च उहने कढ दित्ता, तो 2 मिनट तो बाद रिलैक्स हो गया, आराम आ गया। यह मैं जरूर कहूँगा, बुजुर्ग तो बच्चों का ख्याल रखो, तो अपना ख्याल रखो। 90,000 तो घट इनकम वाले लोग अपना फ्री इलाज करा सकते, 905-451-8211। डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर, डेंटिस्ट्री एट रैम्बलर।

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
2: Punjabi Versa!

ऐसी अंदाज है इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा खाली दिल नहीं मंगदा ये जान भी मंगदा कई बंदे कम्मा दे बिजी हो गए कहते नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो टाइम नहीं है।

0: अच्छी है। शेर तो बहुत हो गया लेकिन एक आध शेर मैं रिदम के साथ भी गा देता हूँ, दिक्कत के साथ।
1: किसी को अपना बना ले किसी पे। टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो। असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
2: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।

0: खरीद लिया गहने
1: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना किथे नहीं मिलिया चंगा सोना
0: ले ए वी गल कोई कहण दी है सोना ता सोना ही हुंदा है गल ता ज्वेलरी दे डिजाइन दी है
1: गल ता तेरी सही है भैन किथों मिलणगे गहनियां दे सोने डिजाइन
2: जनक ज्वेलर्स जनक ज्वेलर्स ते स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है जिदे विच थानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स रिंग्स बैंगल्स दी लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे जनक ज्वेलर्स कॉल 905-230-8800
3: मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास।

0: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
1: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
0: फोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाई प्लाजा के सिल्वर हट
1: 6473393521
0: 6473395 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
1: सिल्वर हट
2: मैं जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले लई
3: लेनिया हो या चार बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओवी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो
5: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है जो करनगे मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच
4: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने
5: कॉल करो 905-874-9878
6: बंबा गया मैं जिथे जावा मुंडे कहंदे बंबा गया
7: आज
8: साडे
9: कोल

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444
1: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 5:30 तो
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

0: First year second mortgage or refinance करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: मल्ली टेंट सर्विसेज तुहाडे स्पेशल इवेंट से हर एक साइज दे वाटरप्रूफ टेंट्स प्रोवाइड करदे ने 10x10 feet तो लेके 40x100 feet दे तंबू ने टेबल से कुर्सियां भी नाल लेके आंदे ने ते तुहाडे बैकयार्ड नु बैंकवुड हॉल वांगू बनाउंदे ने फैंसी चेयर्स भी अवेलेबल हन एलईडी ग्लो इन द डार्क बनी बनाईया बार्स टेबल्स ते कुर्सियां भी तुसी रेंट कर सकदे हो अज ही मल्ली टेंट सर्विसेज नु कॉल करो 647-999-2569 647-999-2569

0: और किस्मत ने उनका इम्तिहान यहाँ तक ही नहीं लिया, 11 साल बाद उनकी बेटी की भी मौत हो जाती है जिससे वो पूरे टूट जाते हैं, और उसके ही 2 साल बाद 2011 में उनकी भी ब्रेन हेमरेज से मौत हो जाती है। और ये जगजीत सिंह की कहानी आपको सिखाती है, उन्होंने शोहरत और दौलत तो बहुत कमाई लेकिन जिंदगी ने उन्हें बार बार गम ही दिए। जगजीत सिंह
1: सो मैनू बिल्कुल नहीं सी पता यार इहदे बारे, फिर मैं वीडियो देखी मैं कि यार इट्स किन्नी ट्रैजिक गल है। सो प्रोग्राम है पंजाबी ना, ते नंबर अपना 905-673-3337 ते थोड़े लई जगजीत जी दा जिहड़ा वीर होने रिक्वेस्ट कीता सी ओही लाउणे आ। मास्टर ज्वेलर्स नूं याद रखो, ज्वेलरी दी खरीदारी करनी है एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड दे कोर्नर ते 6231 है मेफील्ड रोड, मास्टर ज्वेलर्स ते जाओ, टॉप टॉप टॉप दी सोने दी खरीदारी एयरपोर्ट रोड ते मेफील्ड दे बिल्कुल कोर्नर ते। उस तो इलावा मिस्टर सिंह पीजे दी बैजा बैजा ते बल्ले बल्ले आ। मिस्टर सिंह पीजा डील तुसी देखो, सो मिस्टर सिंह पीजे ते मैगा डील है, 2 लार्ज पीजे 4 टॉपिंग ईच 4 फ्री डिप 2 लीटर कोक फ्री, क्या बात है, सिर्फ $40 च। नंबर है 905-500-4000 905-500-4000 मिस्टर सिंह पीजे ते तुसी एक बार गेड़ा जरूर जरूर जरूर लगाओ। आ जाओ फिर सुन दिया।